0: हिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अर्थात् ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: सूत्र समझदारी को सेतु FM अध्यात्म ज्योति
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्रालीद्वारा उत्पादित मंगलम जीरा।

0: गीता ज्ञान।
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। जीवन जीवने कला श्री श्री रविशंकर जी को एक प्रयास आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजे सम्म र साँझ 8 बजे देखि 8:30 सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योतिमा।
2: यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड।

एफएम अध्यात्म ज्योतिमा अब अगाडि कार्यक्रम समर्पण नमस्कार आदरणीय श्रोता कार्यक्रम समर्पणमा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई स्वागत गर्दछु।

कार्यक्रम समर्पण आदरणीय श्रोता अहिले यहाँ कार्यक्रम समर्पण

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज, मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

चलो ले जा चल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा चल्ला निशानी, मेरी मुहर।

0: मैं और मेरी तनहा
1: ये प्यास क्यों नहीं बुझती,
2: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है,
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। पंजरों का

खोली, कुंडी खोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, हे हे, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सदैव।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सदैव।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: आशी पे सरदार।
1: तौबा तौबा, ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा, कि मेरा रखी तेरे करीब अरे फूटे नसीब। आपकी तारीफ
2: एक आशिक गरीब

याद है नव जो मुझसे मिले हसीना नौ दिन तक न रुके पसीना और नंबर दस दस दस और नंबर दस दस दस लिखा है ये तो हर थाने में।

0: एफएमएजे 104.8 मेगाहर्जमा अहिले मनोरञ्जन लिँदै हुनुहुन्छ केही सदाबहार हिन्दी फिल्मी गीतहरूबाट।
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,

के नाम बाल के एक रस्सी लेना, जटाधार के नाम बाल के एक रस्सी लेना, और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी ना

के बाजार से भगवा चुनरी ले आना, जाग के फिर संसार को प्राणी बनने बस जाना।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ